डीवी करंदीकर के संगीत में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना, स्वर था वसंतराव देशपांडे का। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। अब सुनते हैं आकाशवाणी पुणे गायक वृंद ने गाई रचना समूह स्वर में।

आकाशवाणी पुणे गायक वृंद ने गाई रचना आपने सुनी समूह स्वर में। श्रोताओं अब हम सुनाने जा रहे हैं मनोहर सबनिस के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, मनोहर सबनिस के स्वर में आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। आइए कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं मधुकर कुलकर्णी की रचना अंजनी केळकर के स्वर में।

अंजलि केळकर ने गायी हुई मधुकर कुलकर्णी की इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है चार ताल की सवारी, तदुपरांत तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं तनुमय बोस. आपके साथ सारंगी पर हैं अल्लाह राखा कलावंत. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम चार ताल की सवारी, तदुपरांत तीन ताल पर तबला वादन. कलाकार हैं तनुमय बोस.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recital. Listen first to a tabla recital in Char Taal Ki Sawari, followed by Teen Taal. Our artist is Tanmoy Bose. Accompanying our artist on the sarangi is Allah Rakha Kalavant. Listen now to the tabla in Char Taal Ki Sawari, followed by Teen Taal. Our artist is Tanmoy Bose.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम चार ताल की सवारी तदुपरांत तीन ताल पर तबलावादन सुन रहे थे। कलाकार थे तन्मय बोस, आपके साथ सारंगी पर थे अल्लाह राखा कलावंत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बैरागी पर बांसुरी वादन। कलाकार हैं संजय बंदोपाध्याय, आपके साथ तबले पर हैं औसित जाना। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बैरागी पर बांसुरी वादन, कलाकार हैं संजय बंदोपाध्याय।
1: You were listening to a tabla recital in Char Taal Ki Sawari followed by Teen Taal. Our artist was Tonmoy Bose. Accompanying our artist on the sarangi was Allah Rakha Kalavant. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Bansuri recital. Listen to the Bansuri in the rag Bairagi. Our artist is Sanjoy Bondopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Oshit Jana. Listen now to the Bansuri in the rag Bairagi. Our artist Sanjoy Bondopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरागी पर बांसुरी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे संजय बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे औसित जाना। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू द बांसुरी इन द राग बैरागी। आवर आर्टिस्ट वॉज संजय बंदोपाध्याय। Accompanying our artist on the tabla was Oshit Jana. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio, Kolkata, for Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, यह रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं. प्रस्तुत है मिश्र वाद्य संगीत. श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं नैन्सी कुलकर्णी के चेलो वादन से. आपने प्रस्तुत किया है राग बागेश्री, आलाप जोड़ झाला और उसके बाद सुलताल में गत. आपके साथ पखवाज पर संगत कर रहे हैं माणिक मुंडे. सुनते हैं नैन्सी कुलकर्णी का चेलो वादन राग बागेश्री.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे नैन्सी कुलकर्णी का चेलो वादन। आपने प्रस्तुत किया था राग बागेश्री। आपके साथ पखवाज पर संगत कर रहे थे माणिक मुंडे। श्रोताओं, मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन वादन। आपने प्रस्तुत किया है राग मालकौंस। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरविंद कुमार आजाद। सुनते हैं उस्ताद फैयाज हुसैन का वायलिन पर बजाया हुआ राग मालकौंस।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे वायलिन वादन में राग मालकंस। कलाकार थे उस्ताद फैयाज हुसैन। आपके साथ तबले पर थे अरविंद कुमार आजाद। श्रोताओं, ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 27 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. Now listen to a flute recital in Raag Desh by Rohit Prasanna. The Vilambit Gat is set to Ek Taal and Drut Gat is set to Teen Taal.

0: अगली अब सुनिए राग मधुवंती। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: नाउ लिसन टू राग मधुवंती। द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग मधुवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल राग मधुवंती बाय रोहित प्रसन्ना। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वन। कलाकार है यशवंत जाधव। आपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग हंसध्वनि सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आशा तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग हंसध्वनि, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभर। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग मदमात सारंग। कलाकार थे यशवंत जाधव। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आप

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं आलोक चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं कौशिक बंदोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. कलाकार आलोक चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल्स. लिसन टू अ ख्याल इन द राग शुद्ध कल्याण. Our artist is Alok Chatterjee. Accompanying our artist on the tabla is Kaushik Banerjee. Listen now to Khayal in the Raag Shuddh Kalyan. Our artist, Alok Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे आलोक चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे कौशिक बंदोपाध्याय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ठुमरी और दादरा। आज के कलाकार हैं सरोज कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती। सरोज कुमार घोष अपने गायन का आरंभ मिश्र खमाज ठुमरी से कर रहे हैं। तय सुनते हैं ये मिश्र खमाज ठुमरी। कलाकार सरोज कुमार घोष।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग शुद्ध कल्याण। अवर आर्टिस्ट वॉज आलोक चैटर्जी। अकम्पनिंग अवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज कौशिक बैनर्जी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ ठुमरी फॉलोड बाय अ दादरा। Listen to Mishra Khamaj Thumri followed by Mishra Pilu Dadra. Our artist is Saroj Kumar Ghosh. Accompanying our artist on the tabla is Pinaki Chakraborty. Listen to Mishra Khamaj Thumri followed by Mishra Pilu Dadra. Our artist Saroj Kumar Ghosh.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये मिश्र खमाज ठुमरी सुन रहे थे। आज ये कलाकार थे सरोज कुमार घोष। सरोज कुमार घोष अपने गायन का समापन एक मिश्र पीलू दादरा से कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये मिश्र पीलू दादरा।

0: तवैया ये मिश्र पीलू दादरा सुन रहे थे। आज ये कलाकार थे सरोज कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू मिश्र खमाज ठुमरी फॉलोड बाय मिश्र पीलू दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज सरोज कुमार घोष। Accompanying our artist on the tabla was Pinaki Chakraborty. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी।

0: जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कम्पोज इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashvani Delhi. Namaskar. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी नैना देवी। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड सरदार खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर. राग है जौनपुरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ और दो गतें. विलंबित गत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम कुमार मिश्रा. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गते, विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर। संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a vocal edition in Rag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma.

0: अभी आप पंडित बलदेव राज वर्मा गाया राग बैरागी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी।
1: You were listening to a vocal rendition in Raag Bairagi by Pandit Balraj Verma. Now listen to a sitar recital in Raag Bhairavi by Pandit Devrat Chaudhary.

0: अभी आप पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया भैरवी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग भैरवी बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना से, जिसे गाया है मनोहर सबनीस ने।

मनोहर सबनीस ने गाई संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंजलि केळकर के स्वर में सुधांशु की ये भक्ति रचना।

सुधांशु की भक्ति रचना अभी आपने सुनी अंजलि केळकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की ये भक्ति रचना।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी राम भटक के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत गोणाई की। आइए सुनते हैं विदुषी मंजरी आलेगांवकर के स्वर में। संगीतकार हैं रविंद्र खासनेस।

विदुषी मंजिरी आलेगावकर के स्वर में संत गोणाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविंद्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शंकरनाथ बुआ पड़घेकर और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

शंकरनाथ बुआ पड़घेकर और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है कुमुद कुलकर्णी ने।

कुमुद कुलकर्णी ने गाई संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुलसीदास की, जिसे गाया है विनायक राव पटवर्धन ने।

विनायकराव पटवर्धन ने गाई संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है धनश्री घाटे ने।